जुड़ के अखां बंद कर मन नूं जोड़ना। हर जेठ जुड़न दा लोड़ी है, वाहिगुरू नूं कहा हर जेठ।

0: गुरु
1: अखां बंद करके अखां बंद कर जुड़ के पहला मन एक करो ना अखां च दो हिस्सों च वंडिया जांदा जोत है ना एकाग्र करो फिर एक नाल जुड़ो
0: वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु, वाह, गुरु।

खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साहब संघ जी आप संगतां ने सोधा रहरा साहब जी ने पाठ अरदास हुकनों में सरवण कीते हन। वाहिगुरु जी कृपा करन साहब दी दर हाजरी प्रवान करन दरो करो नाम दान चढ़दी कला दात बख्शन जी। आओ हुण छावां दे दीवाना दी रमता हो रही है कीर्तन दियां हाजरियां भरदे हां जी। आप संगतां नूं बेनती है कि जो अपने कोल कल तो 18 तरीक तो लैके 22 मई तक सत्कार जो ज्ञानी पिंदरपाल सिंह जी पहुँच रहे हैं, सो आप संगतां नूं शाम नूं 8 बजे तो लैके 9 बजे तक जो कथा द्वारा निहाल करिया करनगे। सब संगतां ने समय सिर पहुँच के लाहा लेना जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

परम सम्मान योग जुग जुग अटल चवर शतर तकत दे मालक तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाईमान गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ अते मीडिया राही गुरु चरणा नाल जुड़ बैठी साध संगत जीओ आप सारे ही वड़भागी हो धनता दे योग हो जो सतगुरां दी पावन बाणी अमृतमई बाणी सरवण करके आत्मक आनंद माण रहे हो अपना ये मनुखा जन्म सफला कर रहे हो। आओ साम दे दीवाना विच जो गुरबाणी दी लड़ीवार विचार चल रही है वह विचार आपां सांझी कर सकीए। विचार आरंभ करन तों पहला सतगुरां दी बख्शी हुई फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिस पावन शब्द की आप विचार कर रहे हाँ ओ पावन शब्द पहले पातशाह धन धन गुरु नानक देव साहिब सच्चे पातशाह जी की